0: Laika Radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
5: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
4: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
5: दिल तो टूट भी गया,
4: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
6: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
4: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियां, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
0: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

0: ये है लाइका रेडियो, भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
3: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
4: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
3: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
5: इट वॉज जस्ट अनदर डे, अ फेमिलियर ड्राइव थ्रू फेमिलियर कंट्री। But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
6: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio.

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नान हुक्मे

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे,

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जा।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए,

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: देने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
3: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
2: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
3: Or sales at leicamedia.co.uk.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
6: Punjab, the biggest tunes.

लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी की आवाज में ये मीठा सा गाना जिसे म्यूजिक से सजाया था आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम था द ट्रेन, जिसे को प्रोड्यूस किया था राजेंद्र कुमार ने, और इस फिल्म में थी नंदा, और नंदा ने ही राजेंद्र कुमार को सजेस्ट किया था कि इस फिल्म में मेन लीड के लिए राजेश खन्ना को साइन किया जाए। और देखिए, राजेश खन्ना और नंदा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और जिसके गाने आज भी जब हम सुनते हैं ना, तो दिल से एक ही आवाज आती है, वाह क्या गाना है। कमाल का गीत आपने सुना, और उससे पहले हमने आपको सुनवाया शराबी फिल्म का गीत इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, वन ऑफ माय फेवरेट। और इस फिल्म का एक गाना है आपने सुना होगा बहुत ही, हाजिर है आपका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। कहा था कि रवि शर्मा और इसी वजह से उनकी जगह इस शो में मैं यहाँ पर हूँ। उम्मीद है आपको मेरा साथ पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो देर किस बात की है, मतलब थी एक बजे तक बस यूं ही साथ दे दे रही।
1: With competitive rates with online and via the SBI UK branch.
0: हम याद दिला दें कि अगर भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग दी यूनो SBI यूके मोबाइल।

0: और आशा भोसले की आवाजों में था ये गाना 1977 की फिल्म और आजीवन मन का म्यूजिक। और आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है। मैंने आप सभी से पूछा था कि उम्मीद है आपको मेरा साथ अच्छा लग रहा है, तो आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं जिन्हें पढ़कर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा साथ अच्छा लग रहा है। क्या बात है, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, थैंक यू। कौन है ये जिन्होंने अपना ये हमारी प्रज्ञा है, हमारे पास दो प्रज्ञा है, जी एजाज जी, थैंक यू। मनोज जी आपका मैसेज भी मिला है और आप शो को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भरत गंगोराम जी, हरीश खत्री जी, अनिल सोनी जी, वियाना से तोची जी, हेतो सोलंकी अर्जुन जी एंड हमारे विजय गुडोरी जी, आपने आज हमारे साथ एक विचार, आज का विचार शेयर किया है और बड़ी ही पते की बात है। इसमें लिखा है, खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। अगर समय रहते ही हम ये समझ जाएं तो बाद में जो हमें पछतावा होता है ना, उससे हम बच सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है, थैंक यू विजय जी हमेशा ही साथ देने के लिए। ऑफ कोर्स हमारे साथ जितने भी साथी घर में, बाहर, काम पे, गाड़ी में,
1: feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: तो लीजिए रवि शर्मा जी के मनोरंजन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं ऋतु शर्मा और अब समय गया है हिंदी में समाचार सुनने का। तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले समाचार भारत से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में 21 जून को नीट की जो यूजी की परीक्षा है देने वाले सभी कैंडिडेट्स को डीटीसी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वैध एडमिशन कार्ड दिखाएंगे उन्हें सभी डीटीसी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए इनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, यही हमारी प्राथमिकता है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद मौजूदा दिक्कतों के बावजूद

0: में देरी से अदालत में न्याय के लिए आने वाले लोगों को बहुत ही क्षति होती है और इससे न्याय मिलने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह अपने बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया के साथ 10 जनपद स्थित आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सिद्धारमैया राज्यसभा की सीट की पेशकश पहले ही ठुकरा चुके हैं। सिद्धारमैया कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपनी आगे की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान की ओर से सुझाई गई किसी केंद्रीय जिम्मेदारी में उनकी खास दिलचस्पी नहीं है। यूपी से एक दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुरुवार देर रात एक निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि मलबे में दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये हादसा गुरुवार देर रात को हुआ जब पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक निर्माणाधीन ढांचा गिर गया और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। और इसके अलावा खबर सुनवाते हैं आपको गुजरात से आ रही है। जो गुजरात के गिर जंगल जो बहुत पॉपुलर है वहां पर 2 शेरों की मौत हो गई है और ऐसी आशंका है कि ये मौत खतरनाक बेबेसिया इन्फेक्शन फैलने के कारण हुई है। सूत्रों के मुताबिक एहतियात के तौर पर इन्फेक्शन के लक्षणों वाले 17 शेरों को लायंस को अलग कर दिया है और ये उम्मीद जताई रही है, आशंका जताई जा रही है कि अन्य शेरों को भी बेबेसिया इन्फेक्शन हो सकता है। इससे पहले भी 2020 में इस महामारी के कारण 20 से अधिक एशियाई शेरों की मौत हो गई थी। अब खबरें सुनाते हैं आपको विदेश से। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में 2 चीजों ने अहम भूमिका निभाई है, पहली सैन्य कार्रवाई और दूसरा आर्थिक दबाव। उन्होंने कहा है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने या उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। बेसेंट ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से उठाए गए सैन्य कदमों के साथ साथ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान पर इतना दबाव बनाया कि वो बातचीत के लिए तैयार हुआ और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने सेना को गाजा के और हिस्सों पर कब्जा करने का निर्देश दिया है और नेतन्याहू ने कहा है कि शुरुआत में लक्ष्य फिलिस्तीन क्षेत्र के 70% हिस्से पर नियंत्रण हासिल करना है। ये कदम अक्टूबर 2025 में इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उलट माना जा रहा है। गाजा की आबादी पहले ही समुद्र तट के किनारे एक बेहद छोटे इलाके में सिमट कर रह गई है। और खेल से जुड़ी कुछ खबरें आपको सुनवा दें। सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दे दी है। रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के लिए होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। ये ट्रायल 30 और 31 मई को होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने शुक्रवार को ये आदेश दिया। अदालत भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विनेश फोगाट को ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। यही थे आज के प्रमुख समाचार।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी की आवाज में। दो रास्ते फिल्म से लिया था ये गाना, और ये गाना मेरी ओर से था आप सबके नाम पर।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे कि भाई डनबे प्रॉपर्टीज दुबई का नया ऑफिस खुल रहा है। लंदन में उनका दूसरा ऑफिस है जो कि नाइट ब्रिज में दिस सैटरडे को ओपनिंग हो रही है। उनका एक और ऑफिस है हैरो में, और जहां पर उनको काफी सक्सेस मिली है इसलिए अब दूसरा ऑफिस उन्हें खोल रहा है, जहां पर हमारी लाइका टीम लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी। याद रखिए 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक दिस सैटरडे। सो आप जरूर सुनिए और आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं लाइका रेडियो। आप अपडेट्स के लिए लाइका रेडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो याद रखिए डनबे प्रॉपर्टीज दुबई का दूसरा ऑफिस खुल रहा है नाइट ब्रिज में दिस सैटरडे, जहां से लाइका रेडियो टीम लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी। और अगर आप हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल को अभी कॉल कीजिए, या फिर विजिट कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल, या उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। उनके साथ होटल डील्स, फ्लाइट्स, सब कुछ बुक कराइए। और आप जानते हैं कि 40 सालों से वो अपनी कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अवार्ड भी जीता है, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड उन्हें मिल चुका है। तो आप जरूर अगर हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल को याद रखिए।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100. और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-1. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
3: Listen back to your favorite shows by logging on to likearadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.
4: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है, 11:03 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी आज के विचार का, जिसे आप सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ, लेकिन आज इस शो में उनकी जगह मैं ऋतु शर्मा दे रही हूँ आपका साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज के चिंतन की। आज के चिंतन में एक बार फिर से मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। दोपहर का समय था, लेकिन अचानक से मौसम बदल गया, भयंकर तूफान आ गया और बिजली कड़की, और बिजली के कड़कने से जंगल की जो सूखी घास थी उसमें आग लग गई। आग की लपटों ने धीरे धीरे करके सारे जंगल को घेर लिया और पूरा जंगल धुएं से और आग की लपटों से घिर गया। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे, हाथी, शेर, चीता, सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सभी डरे हुए थे, बेबस महसूस कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। सभी ये सोच रहे थे कि अचानक से सब कुछ ठीक था, या कहां से लग गई। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, और जब चिड़िया ने देखा उसका घर पूरा जंगल जल रहा है, तो जानते हैं बाकी जानवरों के तरह चिड़िया भागी नहीं, वो तुरंत नदी के पास गई, अपनी चोंच पानी में डुबोई, एक बूंद पानी चोंच में भरा और लाकर आग पर डाल दिया। और बस बार बार यही कर रही थी, उड़कर नदी के पास जाती, चोंच में जितना भी पानी आता भरकर लाती और आग पर गिराती। उस चिड़िया को ये करते हुए हाथी देख रहा था, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि उसकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी तो वो रुका और हंसने लगा। उसने कहा, ए नन्ही चिड़िया, क्या तुझे लगता है कि तेरे इस एक बूंद पानी से इतनी भयंकर आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने हाथी की बात सुनकर बड़े ही विनम्र भाव से जवाब दिया। चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। चिड़िया की यह बात सुनकर हाथी को एहसास हुआ, मैं भी गलत कर रहा हूं, मेरा नाम तो हो सकता है आग लगाने वालों में लग जाए, लेकिन आग बुझाने वालों में तो किसी हालत में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मैं तो भाग रहा हूं। चिड़िया की बात सुनकर हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। हाथी और चिड़िया को ये देखते हुए बाकी के जानवर भी मदद के लिए आगे आ गए और वो भी आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। और सबके छोटे छोटे प्रयासों से अंत में आग काबू में आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम सिर्फ कमेंट करते हैं, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और इंतजार करते हैं कि बदलाव हो। तो मैं ये कहूंगी कि इंतजार करने की बजाय शुरुआत कीजिए ना।
एक छोटा सा कदम भी मायने रखता है बहुत ज्यादा। हमें हमेशा बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं, वैसे ही एक इंसान का नेक काम दूसरों को प्रेरित कर सकता है, दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जुटते हैं ना, तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं।

0: जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, यानी कि अपने हिस्से का दिया जलाए रखो ताकि संसार में कभी अंधेरा ना हो सके। आज के चिंतन का यही विचार था और हमारे राजेश जी आपने भी आज के चिंतन का विचार बहुत सही समझा है और आपने बहुत अच्छी तरह से इसे व्यक्त किया है। आपने लिखा है कि हमारे सरल पॉजिटिव बदलाव और काम कई लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं, इसलिए कुछ कीजिए, बस यूं ही बैठे बैठे बातें न बनाएं, कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए, बदलाव का हिस्सा बनिए। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि अंधेरा घना है तो क्या हुआ, एक दिया तुम भी जलाओ, निराशा की इस भीड़ में उम्मीद की अलख जगाओ, अकेले चले तो क्या चले, कारवां साथ बनाते चलो, रास्ते की हर नफरत को मोहब्बत से मिटाते चलो, हाथ थाम लो गिरते हुए का, खुद को इंसान बनाओ, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू विजय गुनोवा जी, थैंक यू नलिनी जी कहती हैं बहुत अच्छा चिंतन था आज का, थैंक यू संध्या भावसर जी, थैंक यू विजय गुडुरी जी कहते हैं मुझे आज का चिंतन और संत ज्ञानेश्वर का गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू राजेश जी आपने भी अच्छा मैसेज भेजा है, बहुत सही समझा है आज के चिंतन को, थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू राजीव पटेल जी, थैंक यू महेंद्र बाजारिया जी, अर्जुन जी, सहर जी, हरविंदर जी, जासू जी, निर्मला जी, जैस्मीन, हंसा जी, आप सभी का यही कहना है आप चिंतन के प्रशंसक हैं, हमेशा सुनते हैं। उम्मीद है आज का चिंतन आपको पसंद आया है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है, थैंक यू। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की न्यूज के बाद आप सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ उनके मनोरंजन प्रोग्राम में। चिंतन को समेटते हुए बढ़ जाते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.

0: देने दीवार। है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
3: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
2: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
8: On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza hosts a special on menopause featuring special guests.
9: So I've been navigating menopause on and off since January 2024 and it's happened suddenly. So I haven't had the kind of build up, it's suddenly. So it's been a journey and now I'm navigating menopause without any HRT or anything, any medications.
8: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
10: Leica Radio.
8: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio, with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
4: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: सिलसिला फिल्म से लिया था ये गाना और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स और ऋतु शर्मा आपके साथ है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी. एक बजे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डैन्यू प्रॉपर्टीज अपना नया ऑफिस खोल रहे हैं नाइटब्रिज में. लंदन में उनका ऑलरेडी एक ऑफिस है हैरो में और उनका दूसरा ऑफिस खुल रहा है नाइटब्रिज में दिस सैटरडे. और इस स्पेशल ओकेजन पर हमारी लाइका रेडियो टीम वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी और ये लाइव ब्रॉडकास्ट होगा 11 बजे से लेके 2 बजे तक. और आप अपडेट्स के लिए लाइका रेडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को फॉलो कर सकते हैं. डैन्यू प्रॉपर्टीज दुबई का नया ऑफिस नाइटब्रिज में दिस सैटरडे. याद रखिए लाइव ब्रॉडकास्ट होगा वहां से 11 से 2 बजे के बीच. आप वहां जा सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं.
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: किशोर दा की आवाज में ये जबरदस्त गाना लिया था हमने फिल्म जबरदस्त से, जिसमें म्यूजिक है आजी बर्मन का। और अब जो किशोर कुमार के फैंस हैं उनके लिए है ये खास खबर। तो भाई आप मेरी तरह अगर किशोर कुमार के फैन हैं और उनके गाने पसंद करते हैं, सुनना भी गुनगुनाना भी, तो आपको बता दें कि एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है जिसमें केतन इंद्रानी संजय परफॉर्म करने वाले हैं विद 515 बैंड, और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल में एसेक्स। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं इस प्रोग्राम के लाइका गोल्ड रेडियो।
1: ये है लाइका रेडियो, Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Laga gori gujariya se

0: कितनी मिठास है इस गाने में। आरडी बर्मन ने क्या धुन बनाई है और उस पर आवाज मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। अनुराग फिल्म से था ये गाना, जो 1972 की फिल्म थी, और उससे पहले जुम्मा जुम्मा दे दे। भाई आज फ्राइडे का दिन है तो आपको जो करना है कीजिए, आई डोंट केयर, लेकिन ये गाना मैंने आपको सुनवा दिया। और भावीन इस गाने को सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि फ्राइडे का दिन है और वो चाहते थे कि ये गाना बजाया जाए। तो चलिए आज हमने आपकी बात मान ली और ये गाना आपको ही डेडिकेट कर दिया। और जानते हैं इस गाने में अमिताभ बच्चन की एज 49 इयर्स की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन इस गाने में उन्होंने क्या एनर्जी डाली है। सुनने में तो अच्छा लगता ही है ये गाना, देखने में भी अच्छा लगता है, अच्छी तरह फिल्म आया है। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन किमी काटकर कहाँ गायब है पता नहीं, कभी उनके बारे में होगी बात, यादें मैं उन्हें लेकर आऊंगी। लेकिन उनकी फिल्म्स और उनके गाने इतने ज्यादा नहीं है कि मैं पूरा एक घंटा उनके गीत बजा सकूं, लेकिन जरूर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन लीजिए वो मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के सेकेंड आवर में, नहीं, फाइनल आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और मैं ऋतु शर्मा हूँ आपके साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और एसएस भोगल जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर की है जिसमें लिखा है कि प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो, ये मत पूछो कब होगा, लेकिन जब होगा बेहतरीन होगा, और इसी विश्वास के साथ अपनी जिंदगी बस जीते जाओ। थैंक यू, स्वागत है एसएस भोगल जी आपका। और इसके अलावा उल्लास टोरंटो में हमारा साथ दे रहे हैं और जितने भी साथी सुन रहे हैं। और हाँ, एक मैसेज और पढ़ना चाहती हूँ। ये मैसेज आपने मुझे फर्स्ट वाले आवर में भेजा था, लेकिन मैं देखो कितनी देर में आपका मैसेज पढ़ रही हूँ। और आपका नाम है दीप्ति चंदारिया। थैंक यू दीप्ति चंदारिया आपके प्यारे से मैसेज के लिए। और आपने लिखा है लव यू सो मच, तो मैं भी ये कहूंगी कि आई लव यू, थैंक यू साथ देने के लिए। और चलिए अगला गीत तो मैं आपको सुनवाऊंगी अनुराधा पौडवाल की आवाज में, क्योंकि वो है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आपको याद दिला दें कि आज वन पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा। लेकिन बिफोर एंड ऑफ जून आप विन कर सकते हैं 75 पाउंड्स का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN,
2: वाइल्ड स्टॉक last.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit kentheraldpackaging.com. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: इट वाज जस्ट अनदर डे, अ फैमिलियर ड्राइव थ्रू फैमिलियर कंट्री, बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर केम द अनएक्सपेक्टेड. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
3: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट भी गया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
6: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favorite presenters live. Get the tune in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: राजेश रोशन के म्यूजिक पर अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की आवाज में इंसानियत फिल्म का था ये गाना जो 1994 में आई थी और ये भी अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और ये फिल्म भी उन फिल्म्स में थी जब अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था और उन्होंने उस दौरान 90s में कई सारी फिल्में की हैं जो ज़्यादा चली नहीं हैं लेकिन फिर भी वो फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की और अमिताभ बच्चन तो भी सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार है और ये आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की और आप जानते हैं अनुराधा पौडवाल ही तो है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आगे बढ़ने से पहले अगला गीत सुनाने से पहले आपको हम याद दिला दें एक बार फिर से कि डैन्यू प्रॉपर्टीज अपना नया ऑफिस खोलने जा रहे हैं नाइट ब्रिज में। उनका ऑलरेडी एक ऑफिस है हैरो में जिससे उन्हें काफी अच्छा बिजनेस मिला है और अब हर कोई आगे बढ़ता है तो ये उनका सेकेंड लंदन ऑफिस होगा नाइट ब्रिज में और दिस सैटरडे उसकी ओपनिंग है और इस मौके पर लाइका रेडियो की टीम वहां जाएगी और वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। आप भी जाइए, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां पर आप जा सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं और अपडेट्स के लिए आप लाइका रेडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर फॉलो कीजिए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अरे साय तू क्या कर रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: खूबसूरत गाना फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, और इस गाने ने तो मुझे वेनिस की याद दिला दी जब वेनिस घूमने गए थे, और आजकल मौसम है घूमने जाने का। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ये गाना बहुत ही खूबसूरत था। रेजाज जी आपने सही कहा, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज के बारे में और आपसे बात करना चाहती हूँ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो किशोरदा की आवाज में अगला गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है उस शो के जिसका हम सबको इंतजार है, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंतजार है। माइथोलॉजिकल शो होने जा रहा है जिसका नाम है हमारे राम, और जिसमें आशुतोष राणा रावण का कैरेक्टर निभा रहे हैं और राहुल बने हैं राम। ये शो होने जा रहा है बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आशुतोष राणा की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब वो उस आवाज़ में कविता पढ़ते हैं, जब वो उस आवाज़ में डायलॉग्स पर बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर कि जब वो रावण का कैरेक्टर निभाएंगे तो क्या गजब ढाएंगे। बहुत इंतजार है मुझे उन्हें उस कैरेक्टर में देखने के लिए, देखने का। मैं तो जरूर इस शो को देखने जाने वाली हूँ। अगर आप भी जाना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो फटाफट अपने टिकट्स बुक कराइए, क्योंकि ऐसी चीजों को देखने का मौका बार बार नहीं मिलता है। याद रखिये, माइथोलॉजिकल शो हमारे राम जो होगा 9th से 12th जुलाई के बीच में एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।

0: बड़े दिनों बाद ये गाना मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। मेरे जीवन साथी फिल्म से था ये गाना, जो 1972 में आई थी। और अब 70s से पीछे जाते हैं और मैं आपको लेकर चलती हूँ 50s की ओर। अपने जमाने का एक बड़ा ही सुपरहिट गीत सुनवाती हूँ उन सभी को जो हैं हमारे 70 प्लस यंगस्टर्स, उनके लिए जाता है ये गाना। लेकिन उससे पहले कैंट से सलमा जी आपने मैसेज भेजा है और आप बता रही हैं कि मैं आपको सुन रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ सब ठीक है, क्योंकि मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि कैंट में पानी की थोड़ी समस्या आ रही है, आपके यहाँ सब ठीक ठाक तो है?
1: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: हाउसफुल ट्रैवल।
1: चलिए नया दौर के इस गाने के बाद आपको याद दिला दे एक बार फिर से कि अगर आप हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो उस साउथ हॉल ट्रैवल को याद रखिए। हॉलीडेज विद फ्लाइट्स एंड होटल्स, और जहां पर आप जिनके साथ बीचेस घूम सकते हैं, सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट ऑल प्रोटेक्टेड है ये, और 40 सालों से आपकी सेवा में है साउथ हॉल ट्रैवल। ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। हॉलीडे बुक करने के लिए कॉल कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल को ऑन 02085748410 पर। विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039 635757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.

0: किया है सुरेश वाडकर और आशा भोसले जी की आवाजें थी। और आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने जिस गीत के साथ किया वो फिल्म थी थानेदार। वंस अगेन संजय दत्त भी थे इस फिल्म में और हीरो जितेंद्र भी थे, जयप्रदा थी और माधुरी दीक्षित भी थी। राजन सिप्पी ने इस फिल्म को बनाया था एंड बप्पी लहरी साहब का था संगीत। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। लता जी एंड पंकज जी की पंकज उदास जी की आवाजें शामिल थी। आज का प्रोग्राम शुरू है, दो गीत आपने सुन लिए हैं और इट्स 18 मिनट्स आफ्टर 1 o'clock। सरिता आपसे जानना चाहती है कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं। और अगर किसी वजह से तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। और जो मेरे साथी ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपने अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। सुनते रहिए, इन्जॉय करते रहिए और बता दीजिए कि कौन सा वर्ड था जो दोनों गीतों में आपको बार बार सुनने को मिला। अगर पता चल जाए और इस वर्ड पर आपको कोई और गाना याद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बता सकती हैं। नंबर आपका जाना पहचाना है, उस नंबर के रास्ते आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप SBI UK वालों के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे 127 rupees and 95 paisas। और डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
5: in Dubai.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simzy before we left London.
8: Simzy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जब जब फूल खिले इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को. 1965 की फिल्म थी. मेल वॉइस तो आप सबने पहचानी, रवि साहब ने, और डायलॉग जो बीच में हंसी भी थी वो कौन थी, कमेंट जो कर रही थी वो आवाज़ किसकी थी, अगर आपने पहचानी है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा. वैसे मुझे मालूम है, ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, ज़रा आपकी याद के जो घोड़े हैं उन्हें दौड़ाना चाहती है सरिता.
0: ये है लाइका रेडियो. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स.
2: एक और गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ों में आप तक पहुंचा रही हूं. फिल्म का नाम था सांझ और सवेरा. 1964 में आई थी ये फिल्म. देखी थी आपने? अच्छी लगी थी?

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: भी गीत सभी आपको पसंद आ रहे हैं, आपने कहा हमारा दिन बना दिया, थैंक यू एवर सो मच. यही तो सरिता चाहती है कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते, आपकी हर मोमेंट अच्छी रहे, आप हमेशा इंजॉय करते रहें इन गीतों को, और अगर आपकी कोई याद जुड़ी हो इन गीतों के साथ तो उसे भी चेरिश करते रहिएगा. अब मैं अपने सभी सुनने वालों को बताना चाह रही हूँ कि आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ इट्स हेरो बेस्ड ऑफिस Danube Property, Dubai is delighted to announce the opening of their second London office in Knightsbridge this Saturday. खुलने वाली है. एंड टीम लाइका रेडियो नेटवर्क विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम 11 AM अप टिल 2 PM टू मार्क द स्पेशल ओकेजन. वॉच आउट फॉर अपडेट्स ऑन लाइका रेडियोज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस फ्रॉम द ग्रैंड ओपनिंग. सो जरूर सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए और इंजॉय भी करते रहिए. अब भाई अगले गीत की तरफ सरिता बढ़ रही है, वो भी बड़ा जबरदस्त गाना है, आपको जरूर पसंद आएगा, ऐसी तो आशा हमेशा रखते.
2: LYCA, this is Laika. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 AM and drive back with Raj Badden weekdays at 4 PM. Laika Radio.

0: listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: अब यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
5: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
6: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं?
7: हमारे

बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. ये सेकेंड आवर के पहले दो गीत थे. पहला गीत मैंने चुना था बेवफा सनम फिल्म से, जो 1995 में आई थी, और दूसरा गीत था फ्रॉम द फिल्म शौकीन, 1982 की फिल्म थी. आशा जी की आवाज़ इसमें शामिल थी. तो पहले गीत में सोनू निगम की आवाज़ आपने सुनी. थोड़ा सा फिल्म के बारे में बता दूं और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों ये गाने आज के प्रोग्राम में शामिल हुए. पहला गीत था बेवफा सनम से, और बेवफा सनम का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये एक्चुअली इनिशियली अताउल्ला इसा खैलवी साहब ने गाया था. पाकिस्तान के सिंगर हैं, और लेकिन ये वाला गीत सोनू निगम ने गाया और इसे योगेश जी ने लिखा. और इसके अलावा उन्होंने उई उई मेरी अम्मा पूर्णिमा ने गाया था वो गीत, वो वाला गीत, और वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाए ये गाना, एंड ऑल्सो ओ दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा. ये चार गाने योगेश जी ने लिखे थे, और योगेश जी की आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं. मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दूंगी. ये फिल्म बेवफा सनम एक्चुअली 12th of May 1995 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का संगीत एक नहीं बल्कि बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मिलकर दिया था. निखिल विनय ने इस पर्टिकुलर गाने को जो मैंने शामिल किया उसे निखिल विनय ने अरेंज किया था. वैसे वो गाना बेसिक ट्यून जो थी अताउल्ला इसा खैलवी साहब की थी. एंड बेवफा सनम में कृष्ण कुमार थी, अरुणा ईरानी थी, बीना बैनर्जी थी, एंड शिल्पा शिरोडकर के साथ साथ शक्ति कपूर और किरण कुमार भी थे. और ये फिल्म बनाई थी गुलशन कुमार जी ने. और दूसरा गीत जो था वो फिल्म शौकीन का था. शौकीन फिल्म बासु चैटर्जी ने बनाई थी. अशोक कुमार एंड उत्पल दत्त उस फिल्म में थे, और साथ में थे ए के हंगल, मिथुन चक्रवर्ती एंड रति अग्निहोत्री. शौकीन के भी गाने काफ़ी मशहूर हुए थे. द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म वॉज कम्पोज बाई आर डी बर्मन साहब, एंड लिरिक्स सभी लिखे थे योगेश गौर जी ने. जब भी कोई कंगना बोले, पायल छन चाहे, किशोर दा ने गाया था उस गीत को. और ये रंगे महफिल ये आशा जी का गीत था. आ वहीं चल मेरे दिल ये भी गाना बड़ा प्यारा है, सुरेश वाडकर जी ने गाया हुआ है. एंड चलो हसीन गीत एक बनाएं, ये गाना थोड़ा डिफरेंट है. इसे अशोक कुमार जो हीरो थे इस फिल्म के उन्होंने गाया, और साथ में कृष्णश्री भट्टाचार्य फीमेल वॉइस उन्होंने साथ में गाया था. फिर किसी रोज़ वो गाना भी ज़रूर शामिल करूँगी. राइट, तो रीज़न आपको पता चल गया कि आज योगेश जी के लिखे हुए कुछ एक गीत प्रोग्राम के इस आवर में शामिल करने की मेरी कोशिश है. योगेश गौर कॉमनली क्रेडिटेड एज योगेश, एंड ही वॉज एन इंडियन राइटर एंड लिरिसिस्ट. उन्होंने कुछ लिखी हैं, स्टोरीज भी लिखी हैं, लेकिन साथ में गीतकार भी थे. ही वॉज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बॉलीवुड, एंड पॉसिबली हिज बेस्ट नोन वर्क केम फ्रॉम द फिल्म आनंद. डिड यू नो आनंद के गाने उन्होंने लिखे थे, सॉन्ग्स इंक्लूडिंग कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वो गीत भी इनका लिखा है, एंड ऑल्सो जिंदगी कैसी है पहेली हाय. एंड रजनीगंधा के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे. तो रजनीगंधा के गीत आ रहे हैं. मैंने क्यों किया हुआ है एक गाना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे. वो गीत जिसके लिए प्लेबैक सिंगर मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला, या वो गीत जो बड़ा फेमस हुआ इसे लता जी ने गाया, रजनीगंधा फूल तुम्हारे, ये गाना टाइटल ट्रैक, और या कई बार यूं भी देखा है वो वाला गीत सुनना चाहते हैं. जो भी गीत सुनना चाहते हैं मुझे जल्दी से

0: के जरिए आज पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रेट भी मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है वो भी हम आपको बताते रहते हैं। 127 रुपीस एंड 5 पैसे मिलेंगे अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
4: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
3: रीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा Pride.co.uk. Sakhna rejo, husband ji.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: रजनीगंधा से चुना हुआ ये गीत आपने सुना और मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद भी आया होगा। वैसे ज़्यादातर वोट इसी गीत को मिले थे। दो मेरे साथियों ने लिखा था कि दूसरा वाला गीत मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत शामिल कर दें। वेल, उस गीत के लिए ही वन मुकेश जी वन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। सो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली योगेश जी की। योगेश गौर उनका पूरा नाम था लेकिन जाने जाते थे योगेश के नाम से और उन्होंने बहुत सी स्टोरीज भी लिखी हैं। साथ में गीतकार थे एंड आनंद के गीत मैंने क्यों किया हुआ है वो भी अब तक पहुंचाऊंगी बहुत जल्दी। एंड रजनीगंधा का गीत आपने सुना। ही वॉज बॉर्न ऑन 19th March 1943 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ही मूव टू मुंबई एट द एज ऑफ 16 लुकिंग फॉर वर्क एंड सोट द हेल्प ऑफ हिज कज़न योगेंद्र गौर हु वॉज अ स्क्रीन प्ले राइटर। उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल डेज। ही इवन एक्टेड एज एन एक्स्ट्रा इन द हिट मैथोलॉजिकल फिल्म चक्रधारी फिल्म थी एक उसमें उन्होंने काम किया था स्टारिंग त्रिलोक कपूर एंड निरूपा रॉय। हिज फर्स्ट ब्रेक वॉज इन 1962 when he wrote 6 songs for the Bollywood movie Sakhi Robin and including the songs Tum Jo Aao To Pyar Aa Jaye kitna beautiful gana hai which was sung by Manna Desa and the song launched his career in Bollywood and he worked with some of India's finest directors like Hrishikesh Mukherjee and Basu Chatterjee. So अगला गीत जो है वो मैंने चुना है आनंद से लेकिन उससे पहले बहुत से और काम भी हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: ye hai
2: Laika Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बहुत से प्यारे प्यारे गीत इन्होंने लिखे हैं और मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गीत मैं शामिल कर पाऊँ, नहीं तो एक दो गीत नेक्स्ट आवर तक पहुँच जाएंगे। ये गीत आप तक पहुँचाया।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: राइट, आपको ये बता दूं कि अगर आप किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन हैं तो आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड, एंड इट्स टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में, एंड टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208-514-5400। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका गोल्ड रेडियो। और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैंने साझा करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है ज़रा जान लेते हैं कि राइट, गेट सेट फॉर रिटर्न ऑफ द स्टेज म्यूजिकल सुरेंद्रेला, इट्स टूरिंग फ्रॉम जुलाई फॉर टिकट्स एंड योर नियरेस्ट वेन्यू विजिट rifkotheater.com। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो।
2: This is Leica Radio across the Midlands.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: और वही साउथ ऑल ट्रेवल वालों का भी मैसेज आप तक पहुंचा दें, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ऑल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ ऑल ट्रेवल और कॉल देम ऑन 0208-574-8410।

0: बैक टू बैक दो ब्यूटीफुल गाने हमने शामिल किए. पहला गीता खामोशी फिल्म से, द म्यूजिकल, सलमान खान वाली खामोशी, 1996 में आई थी ये फिल्म. जो गीत मैंने शामिल किया वो बहुत कम सुनाई देता है लेकिन बहुत प्यारा गीत है. एंड दूसरा गीत याराना फिल्म से, राजेश रोशन जी का संगीत, किशोरदा की आवाज़. सो प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है, आपका स्वागत है अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है. वैसे तो बहुत से मेरे साथ ही फर्स्ट आवर से ही मेरे साथ हैं लेकिन कुछ लेट लतीफ होते हैं ना मेरे जैसे, जहाँ भी पहुँचते हैं लेट पहुँचते हैं. अपने आप ही अपनी बुराई कर रही है सरिता. राइट, किसी के भी मैंने आज के प्रोग्राम में अभी तक नाम नहीं लिए हैं, पर थैंक यू एवर सो मच इजाज इन चैशम, हरीश रूटा जी, विमल रॉयन जी, गुरुदेव गांजा, रक्षा जी एंड जगतार जी इन वैंकूवर, प्रकाश सुतरवाला इन नॉर्थ होल्ट, एंड संध्या भावसर बकायदा इतने सारे मैसेजेस भेजती रही. इंतशाब, थैंक यू, आपने कहा मैं ईद पर यहाँ नहीं थी, ईद मुबारक टू एवरीबडी. हंसा वोरा जी, रानी स्लाव में, हरिवदन भाई, सुभाष परमार जी, उल्लास इन टोरंटो, अर्जुन जी, भरत गंगाराम जी, दिनेश पोपट जी, इरम बेना पारिक जी, थैंक यू आपका भी, एंड सुरेखा जी, और आप कौन हैं, आप, यस आप हैं जयश्री परमार एंड सुभाष परमार जी, फरुख मोहम्मद एंड हाना हासरा, तोची जी, मिसेस शेख, थैंक यू तोशी जी, आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम, थैंक यू आपका भी, और आप कौन हैं, यस अनदर मैसेज फ्रॉम राजेश एंड विनी, विनोद एंड वरुण जी, सहर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से सुनते रहे. जसू जी, थैंक यू, और जिनका नाम मैं मिस कर गई उनसे माफ़ी चाहती हूँ. आइए अब ज़रा आगे बढ़ें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप 227 रुपीस एंड 5 पैसा टुडे. एंड सेंड मनी टू इंडिया वाय SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स. ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक विन सेंड ending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Leica Radio.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99.
3: हमजा समोसास 3 for 10.
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
3: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
3: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN.
5: While stocks last, this Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: Z105.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more

0: आपने भी अपने महबूब के लिए कभी ऐसे गीत गाया, कभी उनकी इस तरह से तारीफ की? नहीं की है तो आज कर लीजिएगा। बहुत खूबसूरत गीत था, मीठा मीठा गाना था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गीत, और उसमें दूसरी आवाज थी कुमार सानू जी की। ये गाना पिक्चराइज हुआ था पूजा भट्ट एंड आमिर खान पर, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से चुना गया था इस गीत को। राइट, आज पंकज कपूर, शाहिद कपूर के फादर, ही इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। 29 मई 1954 में इनका जन्म हुआ था। ही इज़ डन टेलीविजन एंड फिल्म्स, एंड ही इज़ द रिसिपियंट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड 3 times नेशनल फिल्म अवार्ड्स। हिज मोस्ट एक्लेम्ड फिल्म रोल्स इंक्लूड्स इंस्पेक्टर पी के इन राख इन 1989, डॉक्टर दीपांकर रॉय इन एक डॉक्टर की मौत इन 1991, एंड मकबूल इन 2004, एंड लेटर बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने पहले भी काम किया है। एंड इनका करमचंद बहुत टीवी सीरियल बहुत फेमस हुआ था। नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें 1989 में राख के लिए मिला था, विच ऑल्सो स्टार्ड आमिर खान एज वेल। सो जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया बड़ी आउटस्टैंडिंग फिल्में, पर इन्होंने मेन लाइक लीड रोल में इतनी फिल्मों में काम नहीं किया है। एंड गांधी में थे जब ये अर्ली अभी एंटर ही हुए थे इंडस्ट्री में, तो रिचर्ड एटनबरो ने जो फिल्म बनाई थी गांधी, उसमें थे पंकज कपूर। एंड उसके बाद आधारशिला, जाने भी दो यारो, आरो, मंडी, बहुत सी यादगार इनकी फिल्में हैं। एंड राख में तो इनके काम को बहुत सराहा गया था। सो आज हमारी तरफ से भी इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू पंकज कपूर।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: Let's go.
1: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: बेबी मलराइन जी कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, पंकज कपूर जी को याद किया और गाने सारे बहुत पसंद आ रहे हैं. थैंक यू संध्या भावसर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और अब अगले गीत की तरफ मैं बढ़ रही हूँ. ये भी गाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले ये ज़रा जानकारी आपके साथ शेयर कर लूँ. आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ इट्स हैरो बेस्ड ऑफिस डेन्यू प्रॉपर्टी दुबई इज़ डिलाइटेड टू अनाउंस द opening of their second London office in Knightsbridge this Saturday. Khulne wala hai. And Team Laika Radio Network will be broadcasting live from 11 a.m. up till 2 p.m. to mark the special occasion. And you can watch out for updates on Laika Radio's Instagram and Facebook pages from the grand opening.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: Another beautiful song, Rafi Saab ki awaaz. Film ka naam tha Aao Pyar Kare. Irada to acha hai na. 1964 ki film.

0: Shah Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: Cardiff, get ready for the taste of Mumbai.
2: SKVP opens from the 30th of May at 111 Queen Street, Cardiff, bringing authentic Indian street food and big flavour to the heart of the city. From your favourite Mumbai-style bites, find it all at SKVP Cardiff. Visit SKVP 111 Queen Street, Cardiff.
3: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स.
4: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट द एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
3: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स.
5: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. ये है लाइका गोल्ड.

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa Play Laika Radio Punjabi Punjabi
1: maa ko bol ki jaldi machhi lekar aa
2: ho ho apni maa ko bolo main lekar aaunga
3: naam Parshuram adharm ka karta hu kaam tamam
1: are kahan ho tum
4: ho ho aalo aalo
3: parivar uske liye charo dham bahar wo hai Parshuram
5: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
6: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
7: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
8: खुद से भी ज्यादा.
6: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
8: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
6: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
0: This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Midlands, plus our other offerings, Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@laikamedia.co.uk. A Laika Radio Classic plays now.

0: Disha Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
2: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
1: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Cardiff, get ready for the taste of Mumbai.
4: SKVP opens from the 30th of May at 111 Queen Street, Cardiff, bringing authentic Indian street food and big flavour to the heart of the city. From your favourite Mumbai-style bites to Sahana products, find it all at SKVP Cardiff. Visit SKVP 111 Queen Street, Cardiff.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
7: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
6: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
7: दिल तो टूट भी गया,
6: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
8: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
6: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: अभी रुक, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803EE392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फ्लाई, कुछ शीशे झूठ बोलते हैं।
1: लाइका रेडियो,
2: टाइम फॉर अनदर लाइका लव क्लासिक।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
3: वो लम्हे वो बातें.
4: 302 लंदन ऑन संडे द 14th ऑफ जून.
2: बुक योर टिकट्स नाउ एट AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
5: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays. What's your travel mantra? CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
3: 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
4: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
3: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સખણા રેજો हस्बैंड जी
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com. फ्रॉम बर्फी लड्डूज गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट. पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
7: अभी कॉल कीजिए 01162021222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest station.
8: Raj Patton. Hey up, it's me, Raj Patton. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7pm with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and of course the Punjabi hits. That's me, Raj Patton on Drive.
0: Leica Radio. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.